0: सतीश और आज मेरे साथ है आरजे निखिल और हम दोनों मिलके ये प्रोग्राम आज करेंगे और रहेंगे आपके साथ अगले दो घंटे के लिए. तो बस सिट बैक एंड रिलैक्स और एंजॉय द म्यूज़िक. तो आज हम कुछ हमारी फिल्मी हस्तियों को याद करने वाले हैं. कुछ हस्तियों का आज बर्थडे है तो आज हम बस उनको यानी जो आज इस दुनिया में नहीं है उनको याद करेंगे और जिनका बर्थडे है उन्हें हम बर्थडे विश करेंगे और उनके कुछ गाने सुनेंगे, उनके बारे में कुछ बातें करेंगे. तो दोस्तों आप तो जानते हैं, सभी सारी दुनिया जानती है कि हमारी बॉलीवुड की लेजेंडरी सिंगर आशा जी अब इस दुनिया में नहीं है. 12 अप्रैल को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा और मुझे पता है पिछले कई प्रोग्रामों में हमारे बाकी आरजेस ने उन्हें याद किया है मगर मेरा तो ये पहला प्रोग्राम है यानी आशा जी के जाने के बाद. तो मुझे लगता है कि हमें कुछ थोड़ा सा एक शुरुआत में तो उनको याद करना चाहिए. और वैसे भी मेरा एक गुरुवार को मेरा प्रोग्राम होता है जो 24/7 पे आता है, उसमें मैं पिछले 3 हफ्तों से आशा जी को याद कर रहा हूँ और ये गुरुवार को भी वो प्रोग्राम में पेश करूँगा और वो 4th एंड फाइनल एपिसोड होगा. तो ज़रूर सुनिएगा. आशा जी ने इतने सारे गाने गाए हैं, इतने बाप रे माय गॉड इतने लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं, हर तरह के गाने गाए हैं, चाहे वो भजन हो, कव्वाली हो, कैबरे हो, लव सॉन्ग हो, यू नेम इट, क्लासिकल गाना हो, सब सब सब सब तरह के गाने उन्होंने गाए हैं. कितनी भाषाओं में गाने गाए हैं, हमारी मराठी लैंग्वेज में भी उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं और एक से बढ़कर एक गाने गाए हैं. तो आज हम कुछ बहुत ही छोटा सा ट्रिब्यूट देंगे और सुनेंगे एक बहुत ही धमाल गाना. निखिल आपको तो याद है 1995 में एक फिल्म आई थी
1: रंगीला.
0: हाँ रंगीला,
1: और हमारे सबके फेवरेट, आई मीन लिटिल बिट मूविंग अवे फ्रॉम द टॉपिक, लेकिन हमारे फेवरेट आमिर खान और उर्मिला.
0: एंड
1: उर्मिला जी आई थिंक शी गेव अ ब्यूटीफुल, आई थिंक अ वेरी ब्यूटीफुल वेल मेड वीडियो. ये जो गाना है आशा जी की आवाज में, एंड जैसे आपने कहा आशा जी, आई थिंक ट्रूली हम कह सकते हैं अ लेजेंड इज गॉन. और आई थिंक हम बातें करेंगे. एंड और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो सब लोग जानते हैं, 2006 में अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंट टॉपिक, एक्स ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर और लेजेंडरी AFL प्लेयर ब्रेट ली, इनके साथ 2006 साल में उन्होंने एक कोलैबोरेशन किया था, एक रोमांटिक ट्रैक योर द वन फॉर मी. इट वाज अ वेरी वेरी लाइट हार्टेड ट्रैक. और ब्रेट ली ऑफ कोर्स हम तो जानते हैं वो तो प्रोफेशनल सिंगर है ही नहीं, लेकिन इवन ही एक्सप्रेस्ड हिज डीप कंडोलेंसेस ऑन द डिमाइस ऑफ आशा जी. एक मेरी बहुत एक डियर फ्रेंड थी और आई लॉस्ट समवन ट्रूली क्लोज टू मी.
0: और आशा जी ने में से कई लोगों के साथ गाने गाए हैं जो प्रोफेशनल सिंगर्स नहीं है, जैसे संजय दत्त के साथ गाना गाया है, उर्मिला के साथ गाना गाया है, उर्मिला मातोंडकर. बस उन्होंने अलग अलग लोगों से मिलकर गाने गाए हैं, सब एज ग्रुप में वो पॉपुलर थी. आज भी उनके कितने गाने हैं, उनके रिमिक्सेस बनते हैं, पिया तो अब तो आजा है, कितने सारे गाने हैं उनके. तो बस आज हम शुरुआत करते हैं बहुत एक भड़कीला गाना रंगीला फिल्म से. आशा जी ने गाया है और फिल्माया गया है उर्मिला मातोंडकर पर.

0: फिल्म से जो आई थी 1995 में, और इस फिल्म के बाद उर्मिला मातोंडकर तो बन गई थी सुपरस्टार। एआर रहमान का म्यूज़िक भी बहुत बढ़िया था, और आशा जी ने, उनकी उम्र इतनी थी फिर भी एक यंग हीरोइन के लिए उन्होंने ये गाना गाया था और बहुत धूम मचाई थी।
1: जी जी हाँ जगदीश जी, मुझे याद है ये गाना था। इवन ऑल द सॉन्ग्स फ्रॉम दिस फिल्म, आई थिंक इट वाज लिटरली माइंड ब्लोइंग। आई थिंक इट सेट अ लैंडमार्क इंडियन म्यूजिक में, आशा जी, और 1995 फॉर दिस सॉन्ग इट सेट अ रिकॉर्ड।
0: यानी आई थिंक आशा जी की उम्र थी 62। इस उम्र में भी उन्होंने इतना एक भड़कीला, बहुत ही मजेदार गाना, बहुत ही एक डांस नंबर गाया था एक यंग हीरोइन के लिए, और वो सुपर हिट हुआ था। और क्या चाहिए, आशा जी जैसे सिंगर होने वाली नहीं है मेरे ख्याल से, जो एक पता नहीं एक लेजेंडरी फिगर थी। वो 1989 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था परिंदा, उसमें आर डी बर्मन का म्यूजिक था और उसके गाने सभी अच्छे थे, फिल्म भी हिट थी। मगर आशा जी ने देखो, एक तरफ उन्होंने दम मारो दम गाया है, ये अभी का गाना गाया है, कितने सारे गाने गाए हैं, और परिंदा फिल्म का एक गाना था वो एकदम अलग अलग मूड में है वो, और उसको ऑफकोर्स साथ में उनके सुरेश वाडकर है, पर ये गाना मेरी बहुत ही मुझे मेरी पसंद का गाना है। आशा जी ने पूरी जी जान के साथ गाया है गाना, तो आइए सुनते हैं परिंदा फिल्म का ये गाना, प्यार के इस मोड पे क्या गाना है, और सुरेश वाडकर भी है उनके साथ, बहुत ही एक बढ़िया।

0: प्यार के मोड़ पे छोड़ोगे जो बाहें मेरी। क्या गाना है आशा जी और सुरेश वाडकर, ब्यूटीफुल गाना है, एकदम कंट्रास्टिंग गाना है रंगीला फिल्म से। तो दोस्तों अभी आशा जी के तो इतने हजारों गाने हैं, हम तो प्रोग्राम घंटों तक तो कर सकते हैं, तो थोड़ा अभी आगे बढ़ते हैं। और आज एक हमारी जो आरजे है उनके लिए खास दिन है, वो कौन आरजे है निखिल?
1: जगदीश जी, हमारे रेडियो मनपसंद की आरजे ईरा पाटकर, और 3 मई है और आज इनका जन्मदिन है।
0: हाँ, अच्छा।
1: तो ईरा, विशिंग यू मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, होप यू हैव अ ब्लास्ट, और जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां एंड एंजॉय योर डे।
0: यस ईरा, बहुत बहुत बधाई हो। आपकी उम्र तो हम पूछेंगे नहीं, पर आप तो शायद 21 साल की होगी, तो बस आपके लिए हम बधाई देते हैं बहुत बहुत। तो चलिए अब हम बातें करते हैं। दोस्तों हम तो इतनी सारी फिल्में आजकल बनती है हमारे भारत देश में, हमारे सबसे ज़्यादा फिल्में बनती है, फीचर फिल्म भारत देश में ही बनती है, और हम इतने एंजॉय करते हैं। सब हिंदी फिल्म्स होती है, सब रीजनल फिल्म्स है, तमिल, तेलुगू, मलयालम, सब भाषाओं में इतनी सारी फिल्में बनती है। ऑफकोर्स हिंदी फिल्में शायद सबसे ज़्यादा बनती है, पर आपको पता होगा कि 113 साल पहले यानि आज के दिन 3 मई 1913 को हमारी बॉलीवुड की पहली फिल्म बनी थी। ऑफकोर्स उस ज़माने में उसको बॉलीवुड नहीं कहा जाता था, पहली फिल्म बनी थी और वो थी राजा हरिश्चंद्र। ये ऑफकोर्स साइलेंट फिल्म थी, पर इसमें सब टाइटल्स थे, यानी इंग्लिश में थे, एक मराठी, हिंदी लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेजेस में ये फिल्म बनी थी, यानी नॉट एज अ साउंड बट सिर्फ सब टाइटल्स, क्योंकि एक नया सब ज़माना था, नया टेक्निक था, तो तब साइलेंट फिल्में ही बनती थी। तो और ये फिल्म बनाने वाले थे हमारे बहुत ही महान कलाकार दारा साहेब फाल्के, उन्होंने बहुत ही मेहनत के बाद ये फिल्म बनाई थी। ये हमारी पहली फीचर फिल्म है हमारे भारत की, और इसमें और एक ख़ास बात ये थी कि उस ज़माने में औरतें घर के बाहर ही कदम नहीं रखती थी, घर संभालना, बच्चे पैदा करना, वही उनका काम था, तो फिल्म में काम करने के लिए कोई औरतें तैयार नहीं होती थी। तो इस फिल्म में सभी जो फीमेल रोल्स है वो सब मेल्स ने किए थे। तो बाद में धीरे धीरे ऑफकोर्स ज़माना बदलता गया, फिर बहुत सारी हीरोइंस आ गई। और एक ख़ास बात ये थी कि इस फिल्म के सब कुछ दादा साहब फाल्के थे, यानी ऑफकोर्स उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा था, डायरेक्ट किया था, प्रोडक्शन डिज़ाइन, मेकअप, फिल्म एडिटिंग अलॉन्ग विथ फिल्म प्रोसेसिंग, और इसके फोटोग्राफर तो अलग थे। तो हम उनको याद करते हैं, और देखो उन्हीं की बदौलत हम आज इतनी सारी फिल्में देख पा रहे हैं, इतनी सारी, कितना टेक्निक सब एडवांस हो गया है। वो तो एकदम बेसिक फिल्म थी
1: जी,
0: उस ज़माने के लिए बहुत बड़ी बात थी वो, मगर आज तो देखो इतना ज़माना बदल गया है, इतना नया टेक्निक आ गया है। तो हम उनको याद करते हैं, कभी भूल नहीं सकते हैं दादा साहब फाल्के को।
1: और जगदीश जी, आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आपने कहा कि यस, आई थिंक जैसे हम कहते हैं आई गेस द ट्रेडिशन और द ट्रेंड्स ऑफ फिल्म काफी बदल चुके हैं, दे हैव चेंज्ड क्वाइट अ लॉट ओवर टाइम। और आई थिंक आजकल के जो बॉलीवुड फिल्म्स, ऑब्वियसली वी हैव सीन इंडिया, आई थिंक इंडियन सिनेमा, हिंदी सिनेमा, बॉलीवुड जो कहते हैं, वी हैव सीन इट डेवलप ओवर टाइम, और आई थिंक हम कह सकते हैं रिसेंटली इट हैज़ रियली चेंज इन फॉर द बेटर, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है, जैसे हम कंपेयर करते हैं विथ इवन फॉर इंस्टेंस लाइक रील्स और जो यूट्यूब पे वीडियोज है, इवन नॉट नेसेसरली मैं कह रहा हूँ जो फेमस आर्टिस्ट लाइक सिंगर्स और एक्टर्स जो पॉपुलर रील्स और जो यूट्यूब वीडियोज बनाते हैं, से इवन द कॉमनर्स, द कॉमन मैन लाइक जैसे आप और मैं, द कॉमन मैन और कॉमन वुमन ऑन द स्ट्रीट, आजकल का जो ट्रेंड है इवन विथ सिनेमाज और वीडियोज, आई थिंक जैसे आप जानते हैं कि आई थिंक इन द 80s 90s और इवन बिफोर दैट हिंदी सिनेमा का जो ड्यूरेशन था वो मेरे ख्याल से काफ़ी लॉन्ग फिल्म्स थे, काफ़ी लंबे थे, ऑलमोस्ट 3-3.5 hours, क्योंकि आई थिंक स्लोली आफ्टर दैट जो ट्रेंड काफ़ी चेंज हुआ था और दे शॉर्टन्ड इट डाउन टू अराउंड 2 hours. आई मीन कभी कभी ऐसा होता है, रिसेंटली आपको मालूम है जो हिट फ्रेंचाइज थी धुरंधर, ये जो 2 films थे और रिसेंटली दैट फिल्म इज़ वन ऑफ द फिल्म जो आई थिंक द ड्यूरेशन इज ऑलमोस्ट 3.5 hours मेरे ख्याल से, लेकिन काफ़ी इन द मिडिल पीरियड जो काफी फिल्म्स थे द ट्रेंड इज नाउ बिकम शॉर्टर, क्योंकि व्यूअर्स वो क्विक और क्विक स्टोरी, इमीडिएट स्टोरी, दे वांट समथिंग क्विक और ज्यादा उनको पेशेंस नहीं है मेरे ख्याल से. आई थिंक द ट्रेंड हैज चेंज्ड ओवर टाइम.
0: उस जमाने में आप बात कर रहे हैं लॉन्ग फिल्मों की, एक संगम फिल्म आई थी राज कपूर की, वो भी बहुत बड़ी फिल्म थी.
1: हाँ.
0: और मेरा नाम जोकर, उस फिल्म में 2 intervals थे.
1: हाँ. 4 hours की फिल्म थी ना वो,
0: बहुत बहुत लंबी फिल्म थी, तो उसके बारे में हम बाद में बातें करेंगे. तो पहले तो चलिए अब हमारे जो एक आर्टिस्ट है उनके बारे में हम बाद में बातें करेंगे. और पहले हम सुनेंगे उनकी फिल्म का एक गाना और फिर आप समझ जाओगे कि हम कौन से आर्टिस्ट को आज याद कर रहे हैं. तो चलिए, कौन सा गाना है?
1: ये गाना है चांदनी ओ मेरी चांदनी.
0: हाँ,
1: और
0: समझ
1: जी, हाँ, जगदीश जी आप बताएंगे, आफ्टर सम टाइम हम बताएंगे कौन आर्टिस्ट है.
2: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ, AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा.

0: जी हाँ दोस्तों, आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं कौन से कलाकार के बारे में बात कर रहा हूँ। आपने तो पहचान ही लिया होगा कि भाई हम ऋषि कपूर, द ग्रेट ऋषि कपूर के बारे में बात कर रहे हैं। और उनका देहांत हुआ था 30 अप्रैल 2020 में। ही वॉज 67। तो उनको हम याद कर रहे हैं। और अभी आपने ये जो गाना सुना, ये बहुत ही उस ज़माने का सुपरहिट गाना है, चांदनी फिल्म का। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, टाइटल में ही था वैसे। और ऋषि कपूर ने अपने करियर की शुरुआत में एक एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मेरा नाम जोकर में काम किया था। और ऑफ कोर्स ये राज कपूर की फिल्म थी, फिल्म तो ज़्यादा चली नहीं थी, पर आज तो एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है। एक तो मेरे ख्याल से वो लंबी फिल्म थी और लोगों ने सोचा था कि ये एक कॉमेडी फिल्म है, और वैसे कॉमेडी तो फिल्म नहीं थी क्योंकि इस फिल्म का टाइटल था मेरा नाम जोकर, तो लोगों को लगा कुछ कॉमेडी फिल्म होगी। मगर इतने सारे आर्टिस्ट थे उसमें, राज कपूर, धर्मेंद्र, मनोज कुमार, पद्मिनी, सिमी ग्रेवाल, और उनके साथ थे चिंटू यानी ऋषि कपूर, एक चाइल्ड आर्टिस्ट। उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया था। और ऑफ कोर्स आगे चलकर उन्होंने बॉबी फिल्म में एज अ एडल्ट हीरो का काम किया था। और ऑफ कोर्स बॉबी तो इतनी सुपर डुपर हिट हुई थी। मुझे याद है उस ज़माने में ये जब फिल्म आई थी तो मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, वो बार बार ये फिल्म देखते थे, बार बार। एक तो इसके गाने बहुत हिट थे, और उस ज़माने में टीवी की शुरुआत तो नई नई हुई थी, ज़्यादा गाने आते नहीं थे। तो आइदर रेडियो पे सुनो या तो थिएटर में जाके देखो। और ऑफ कोर्स एक फर्स्ट टीनेज लव स्टोरी थी, तो ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया, और म्यूज़िक इतना एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन था। तो ये एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी उस ज़माने की। आज भी उसके गाने बहुत ही चलते हैं। तो पर अभी हम कौन सा गाना सुनने वाले हैं?
1: ये और एक सुनेंगे गाना, ये तो काफी हिट गाना है। इट्स एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट्स जगदीश जी, फ्रॉम दी फिल्म बोल राधा बोल, टुक टुक टू। दिस इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, एक काफी खूबसूरत गाना है, तो क्यों ना ये गाना सुनते हैं हम।
0: यस।

0: Look at it now, the trend has changed from VHS to VCD to DVD or up Netflix.
1: Netflix,
0: I think the times have changed. Or who knows, pata nahi future mein kya hoga. Maine suna hai ki Netflix kafi in some time, it will be a new HD blue screen type ek nahi technology I've read recently. So I think that's the future of Netflix we will head in the future. So aise jaise technology is changing. Aur Jagdish ji, hum baat kar rahe about the legendary, unfortunately the late श्री हमारे ऋषि कपूर साहब और आई थिंक जब हम कपूर खानदान के बारे में बात करते हैं तो जैसे कहते हैं एक्टिंग रन्स इन द फैमिली ऋषि कपूर उनकी जो वाइफ है नीतू सिंह और रणबीर कपूर आई थिंक एक्टिंग इट्स मैजिक इन द फैमिली ऐसा लग रहा है क्योंकि राज कपूर आई थिंक ऑल द कपूर्स हैव डन समथिंग वेरी यूनिक और हम सुन रहे थे गाना तू तू तू फ्रॉम द 90s क्लासिक बोल राधा बोल और आई थिंक शुरुआत में हमने बात की थी अबाउट ऋषि कपूर और आपने कहा था आपने इस फिल्म के बारे में बात की थी मेरा नाम जोकर जो 1970 में आई थी और इस फिल्म में ही अपीयर्ड एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट और जैसे आपने कहा हिज फर्स्ट लीड रोल बॉबी फिल्म में थे और मेरा नाम जोकर आई थिंक इस फिल्म के बारे में हम बात करते हैं जी एज द नेम सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि इट इज अ लाइट हार्टेड कॉमेडी फिल्म बट एक्चुअली वो बहुत एक सैड इट्स अ वेरी इमोशनल फिल्म और आई थिंक द टर्मोइल्स एंड द स्ट्रेसेस एंड द स्ट्रगल्स ही गोज थ्रू टू बिकम सक्सेसफुल और इस फिल्म के गाने काफी पॉपुलर थे एंड आई थिंक आपने कहा दिस वाज अ वेरी वेरी लॉन्ग फिल्म काफी लॉन्ग फिल्म थी आई थिंक ऑलमोस्ट 4 घंटे
1: दो इंटरवल्स थे इसमें तो बहुत ही बट अच्छी फिल्म थी आजकल तो एक कल्ट क्लासिक बन गई है यस
0: जी हां
1: बहुत बढ़िया
0: जी तो आज थोड़े टाइम में हम बात करेंगे और डिस्कशन करेंगे ऋषि कपूर के बारे में और ऐसा मैंने सुना है कि इस फिल्म के बारे में बॉबी जो फिल्म थी आई थिंक जैसे आपने कहा इट वाज अ सुपर हिट और एक आई थिंक हम कह सकते हैं नॉट आई वुडंट से नेगेटिव लेकिन एक इमोशनल और एक शायद सैड बात है इस फिल्म के बारे में कि मेरा नाम जोकर वाज अनफॉर्चुनेटली इट वाज अ वेरी लाइक अ फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस और टू रिकवर द डेट्स फ्रॉम दिस फिल्म दे हिज फादर राज कपूर जी मेड बॉबी एंड आई थिंक इट ब्रोक रिकॉर्ड्स वर्ल्ड वाइड
1: यस क्योंकि उनकी बहुत एम्बिशियस फिल्म थी मेरा नाम जोकर वो फ्लॉप हो गई और वो पूरे कर्जे में डूब गए थे तो इट वाज नॉट हिज एम टू लॉन्च हिज सन बट टू रिकवर द मनी और पहली ये टीनेजर लव स्टोरी थी बॉबी की
0: इट वाज वेरी यूनिक आई थिंक उनके साथ डिंपल
1: और डिंपल का पड़िया एकदम यंग थी 15-16 साल की तो एकदम बहुत सुपर हिट मूवी थी वो
0: और एक थर्ड एक्टर मेरे ख्याल से आई थिंक वाज इट द टीचर सिम्मी ग्रेवाल मेरे ख्याल से हां हां वो भी एक यूनिक थी आई थिंक द कॉम्बिनेशन वाज वेरी यूनिक और एक वेरी इंटरेस्टिंग एक लाइट हार्टेड लव रोमांटिक फिल्म है तो क्यों ना हम कंटिन्यू करते जगदीश जी आई थिंक लेट्स कंटिन्यू द मैजिक एंड मैडनेस ऑफ ऋषि कपूर और सुनते हैं आई थिंक क्यों ना सुनते हैं ये गाना इट्स अ वेरी कल्ट क्लासिक और उनके जो बेटे हैं रणबीर कपूर अ फ्यू इयर्स बैक ही हैड रीमेड इट इन द फिल्म बचना ए हसीनो फ्रॉम द यशराज कैंप बचना ए हसीनो फ्रॉम हम किसी से कम नहीं
1: क्लासिक सॉन्ग बचना हसीनो लो मैं आ गया

बचना ए हसीनो जी हाँ श्रोताओ वेलकम बैक आप सुन रहे हो रेडियो मनपसंद ऑन CMS मल्टीकल्चरल रेडियो ऑन FM 91.1 और जैसे आप जानते हैं ये प्रोग्राम पेश होता है हर मंगलवार शाम 7 से 8 बजे तक और हर रविवार सुबह 10 से 12 बजे तक जी हाँ सो आई थिंक यू कैन एंजॉय आप एक कप ऑफ कॉफी के साथ और चाय के साथ यू कैन एंजॉय रेडियो मनपसंद कीप वार्म इन दिस वेरी वेरी कूल वेदर और जगदीश जी आप तो ऑफकोर्स मालूम है कि ये प्रोग्राम आप रेडियो मनपसंद 24/7 ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव ऑन द रेडियो मनपसंद ऐप सो ट्यून इन एंड लिसन इन और हम बात कर रहे हैं ऑन द लेजेंडरी द वेरी लेट श्री ऋषि कपूर साहब आई थिंक हम कह सकते हैं लेजेंडरी वेरी टैलेंटेड लाइवली बबली एक्टर अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में नहीं है बट स्टिल वी कैन स्टिल सेलिब्रेट और एक्नॉलेज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिंदी सिनेमा और आप सुन रहे थे गाना फ्रॉम द फिल्म हम किसी से कम नहीं और जगदीश जी आई थिंक ऋषि कपूर के बारे में जो बात करते ऑन स्क्रीन वो तो है ही जैसे कहते थे इनके बारे में चॉकलेट हीरो ही वाज वेरी आई थिंक नॉट अ वेरी मैचो एक्शन हीरो लेकिन एक्शन रोल्स उन्होंने किए थे बट ही वाज नोन फॉर हिज काफ़ी जो यूनिक एक्टिंग स्टाइल थी और एक नेचुरल कैरेक्टर रोल्स की वो साथ ही वॉज वेरी वेरी कम्फर्टेबल इन स्लिपिंग इन टू दैम और इनके बारे में ऑफ स्क्रीन उनके बारे में जो बात करते ही वॉज सेड टू बी वेरी वेरी आउटस्पोकन अबाउट सोशल मीडिया प्रेजेंस और आई थिंक करंट इशूज़ और एनी जो करंट जो इट कुड बी एनीथिंग लाइक सोशल इशूज पॉलिटिकल इशूज ही वॉज वेरी वेरी आउटस्पोकन ऑन सोशल मीडिया और कई सालों पहले बिफोर हिज डिमाइस ही रिलीज्ड एन ऑटोबायोग्राफी जो कहते हैं खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड और इस बायोग्राफी में उनके ज़िंदगी के बारे में ही वॉज वेरी वेरी ऑनेस्ट वेरी अपफ्रंट एंड डिडंट लीव एनी सीक्रेट्स स्पेशली इंक्लूडिंग द स्ट्रगल्स द सक्सेसेस अबाउट हिज लाइफ और इनके पिताजी के साथ रिलेशन आई मीन ऑफकोर्स दे हैड अ गुड रिलेशनशिप बट देर वर सम स्ट्रगल्स और आई थिंक ही रिलीज्ड अ वेरी वेरी ऑनेस्ट अकाउंट अबाउट हिज लाइफ तो आई थिंक क्यों ना हम एक गाना सुनते हैं अनदर ऋषि कपूर हिट ट्रैक और हम सुनेंगे किशोर कुमार की आवाज़ में एक गाना ओम शांति ओम फ्रॉम द क्लासिक फिल्म कर्ज तो चलिए लगे रहिए सुनते रहिए रेडियो मनपसंद

0: अभी आपने जो गाना सुना वो एक क्लासिक गाना है कर्ज फिल्म का, और शायद आपको पता होगा कि ये जब फिल्म रिलीज़ हुई थी जो री इनकानेशन थीम पे थी, पुनर्जन्म के थीम पर थी, ये एकदम फ्लॉप हो गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद ऋषि कपूर डिप्रेशन में चले गए थे। तो मगर आजकल तो ये फिल्म बहुत ही, अगेन मैं कह सकता हूँ कि कल्ट क्लासिक है। आज ये फिल्म लोग देखते हैं और सराहते हैं, इसके गाने, ऋषि कपूर के डांसेस। और ऋषि कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने जब एज अ हीरो काम किया तो उनके सारे रोल एक जैसे थे, जैसे वो एक चॉकलेट हीरो थे, हीरोइन के पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं और गाना गाते हैं, बस यही काम था। उन्होंने कहा जब उन्होंने कैरेक्टर आर्टिस्ट के रोल करना शुरू किया तब उनको रियल सेटिस्फैक्शन मिला। जैसे कि देखो 2012 में जो अग्निपथ फिल्म का रीमेक आया था उसमें उनका जो रोल था एक अलग ही रोल था। 102 नॉट आउट में जब उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था वो एक अलग रोल था। तो उन्होंने कहा था कि मैंने जब कैरेक्टर रोल्स करना शुरू किया तब मुझे रियल सेटिस्फैक्शन मिला कि मैं कुछ कर रहा हूँ, नहीं तो मैं बस हीरोइंस के पीछे दौड़ रहा हूँ, पेड़ के पीछे भाग रहा हूँ और गाना गा रहा हूँ बस। ऑफकोर्स वो भी उनकी एक उस फिल्मों में भी बहुत मज़ा आता था, हमें तो आई यूज़ टू एन्जॉय फिल्म 70s 80s में जो फिल्में आई थी उनकी, बहुत मुझे तो आई रियली एन्जॉयड दैट। तो चलिए अब आपको कुछ कहना है।
1: जी हाँ, और जगदीश जी आई थिंक हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर कर ऋषि कपूर के बारे में, और जैसे आपने कहा था अबाउट आई गेस हिम वांटिंग टू चेंज हिज इमेज, जैसे लाइक यू ही डिड लाइक कैरेक्टर आर्टिस्ट रोल्स, और आई थिंक हम कह सकते टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर, आई मीन जैसे हम जानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली इनका देहांत हो गया अप्रैल 2020 में, लेकिन कई सालों पहले 2013 साल में 2013 में इन दी एक्शन थ्रिलर जो एक फिल्म थी, इस फिल्म का नाम था डी डे, और इट वॉज अ मल्टी स्टार कास्ट विद अर्जुन रामपाल और काफ़ी एक्टर्स थे। आई थिंक ऋषि कपूर मेरे ख्याल से वो उनकी इमेज काफ़ी चेंज करना चाहते हैं, काफ़ी बदलना चाहते हैं, क्योंकि ही प्लेड द कैरेक्टर ऑफ डी और दाऊद इब्राहिम, और इट वॉज अ वेरी वेरी डिफरेंट रोल ही डिड। और आई थिंक ऋषि कपूर मेरे ख्याल से इस फिल्म कंप्लीट होने के बाद वो उनकी जो इमेज थी ही कॉन्फिडेंटली सेड मैंने इमेज चेंज की थी, और वो काफ़ी इस बारे में प्राउड था।
0: तो चलिए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और अब
1: नेक्स्ट हमारे जो आर्टिस्ट है जगदीश जी, हम बात करेंगे द लेट इरफान खान साहब, और आई थिंक मैं एक यूनिक एक लिंकिंग फैक्टर शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि वी जस्ट टॉक्ड अबाउट, हमने ये फिल्म के बारे में बात की थी द फिल्म डी डे, और इसमें भी थे ऋषि कपूर और इनके साथ इरफान खान थे, तो दोनों ही ये फेमस एक्टर्स थे इस फिल्म के बारे में, और आज इस प्रोग्राम में हम दोनों ही एक्टर्स के बारे में बात करेंगे, और वी आर ऑनरिंग द लाइव्स ऑफ ऋषि कपूर साहब और इरफान खान साहब। तो जगदीश जी, आई थिंक इरफान खान साहब के बारे में थोड़ी देर में बात करते, लेकिन इन द मीन टाइम क्यों ना हम इस एक फिल्म से एक गाना सुनते, ओ हो रिमिक्स फ्रॉम द टैलेंटेड आर्टिस्ट सुखबीर सिंह।
0: ब्यूटीफुल सॉन्ग।

पाता है ना रात को सोया जाता है। उलझा रहता हूँ यादों में मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना जिंदगी को हंस के जीना। तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

0: अभी आपने हिंदी मीडियम का ये एक रिमिक्स गाना सुना, इसके ओरिजिनल सिंगर थे सुखबीर और ये एक बहुत ही हिट फिल्म थी। वैसे इरफान खान ने एक फिल्म आई थी 1988 में जिसका नाम था सलाम बॉम्बे, उसमें एक छोटा सा रोल किया था। बाद में कुछ फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने एक फिल्म में काम किया, मकबूल। ये फिल्म बहुत ही मकबूल हुई थी, 2004 में आई थी। बाद में तब्बू के साथ उन्होंने एक फिल्म की थी जिसका नाम था नेमसेक, और बाद में लाइफ इन अ मेट्रो, और पान सिंह तोमर, ये एक फिल्म आई थी, इसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था बेस्ट एक्टर का। इन्होंने इसमें टाइटल रोल किया था। और बाद में एक के बाद एक बहुत ही बढ़िया फिल्में उनकी आई थी, जैसे लंच बॉक्स है, निमरत कौर के साथ की थी, एक बहुत एक अलग फिल्म थी। पीकू तो सब जानते हैं, अमिताभ बच्चन और दीपिका के साथ उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया था, तलवार फिल्म है। तो उनकी कई सारी फिल्में हैं।
1: जी हाँ, और जगदीश जी आपने कहा था उनकी फिल्म्स और एक्टिंग के बारे में, और एक काफ़ी यूनिक एक्टर थे। और आई थिंक इमीडिएटली आई जस्ट रिमेम्बर जो एक फिल्म थी 2006 साल में आई थी, एक ड्रामा फिल्म थी, इट वॉज अ मल्टी स्टारर, लाइफ इन अ मेट्रो। एक जो एक ह्यूमरस एलिमेंट था, आई लव द सीन, आई स्टिल रिमेंबर जो व्हेन ही कम्स इन ऑन अ हॉर्स एंड ही राइड्स थ्रू द सिटी, एक काफ़ी ह्यूमरस थी लाइफ इन अ मेट्रो। और इसके बाद एक सीक्वल भी आई थी, ऑब्वियसली इस फिल्म में नहीं थे वो, बट जैसे आपने कहा, आई थिंक ओवर हिज फिल्मी करियर ही हैज डन अ वाइड वैरायटी ऑफ रोल्स। और इनिशियली जो मुंबई शहर में आए थे, बॉलीवुड बॉलीवुड प्रेजेंस के पहले ही एक्चुअली यूज टू वर्क एक एयर कंडीशनर टेक्नीशियन के साथ एक काम कर रहे थे, ही वॉज वर्किंग एज एन एयर कॉन्टेक। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट थी जगदीश जी, द फर्स्ट एयर कंडीशनिंग जॉब उन्होंने रिपेयरिंग की थी, इट वॉज फॉर हिज आइडल, ही वॉज अ बिग फैन ऑफ आवर श्री राजेश खन्ना जी। और इस राजेश खन्ना जी का एयर कंडीशनर उन्होंने रिपेयर किया था, और उसके बाद आई थिंक पूछने की जरूरत है ही नहीं।
0: तो चलिए आप सुनते हैं और एक गाना।
1: जी हाँ, गुरु रंधावा की आवाज में फ्रॉम द सेम फिल्म हिंदी मीडियम, तेनु सूट सूट कर दा।
0: यस यस।

0: Shota, welcome back. आप सुन रहे हो रेडियो मनपसंद ऑन सी एम एस कम्युनिटी रेडियो ऑन एफ एम 91.1 और आप सुन रहे थे एक गाना गुरु रंधावा की आवाज़ में तेनु सूट सूट एक्नोलेजिंग इरफान खान और आई थिंक जगदीश जी एक लेजेंडरी एक्टर और हम कभी नहीं उनको भूलेंगे विल ऑलवेज रिमेंबर इरफान खान आई थिंक अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दैट ही हैज़ मेड टूवर्ड्स बॉलीवुड तो चलिए क्यों ना हम मूव ऑन करते टू द नेक्स्ट सेगमेंट
1: जी हाँ दोस्तों, अब हम बातें करेंगे बॉलीवुड की एक बहुत ही मशहूर अदाकारा अरुणा ईरानी के बारे में। वैसे गूगल के कई कुछ साइट्स पे उनका बर्थडे दिया है 3 मई और कई साइट्स पे दिया है कि वो 18 अगस्त है। तो भाई मैं क्या कहता हूँ, हम आज भी उनका बर्थडे मनाएंगे और 18 अगस्त को भी उनका बर्थडे मनाएंगे। अरुणा जी, अगर आप सुन रहे हो तो हमें ज़रूर बताइए कि आपका बर्थडे आज है या 18 अगस्त को है। तो चलिए हम उनके बारे में थोड़ी बातें करेंगे ही। उन्होंने पहली बार फिल्म में काम किया था, वो फिल्म थी गंगा जमुना। ये फिल्म आई थी 1961 में, तब वो सिर्फ मेरे ख्याल से 11 साल की थी और वो एक स्कूल चलाते हैं नाजिर हुसैन, उनमें एक स्टूडेंट होती है और वो पूरे ग्रुप में बैठी हुई दिखाई देती है। तो वो उनका पहला रोल था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। उन्होंने बाद में कुछ फिल्मों में काम किया, जैसे अनपढ़ फिल्म आई थी एक 1962 में जिसका गाना बहुत ही मशहूर है, आपकी नज़रों ने समझा, वो गाना बहुत ही मशहूर है। फिर उन्होंने जहां आरा फ़र्ज, जो जितेंद्र की फिल्म फ़र्ज में काम किया, उपकार में किया और कुछ फिल्मों में काम किया। मगर उनको रियल जब रिकग्निशन मिला वो फिल्म थी कारवा, जो आई थी 1971 में। इसमें थे जितेंद्र, आशा पारेख और अरुणा ईरानी। इस फिल्म में उनका रोल भी बहुत ही अहम रोल था और उनका बहुत ही फुटेज था इसमें। उसमें कुछ गाने भी थे, उनके ऊपर फिल्माए गए। उनमें से एक गाना अभी हम सुनने वाले हैं, वो मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है। आर डी बर्मन का म्यूज़िक है और बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही मेलोडियस गाना है। तो चलिए सुनते हैं दिलबर दिल से प्यारे।

0: जी हाँ श्रोता, वेलकम बैक। आप सुन रहे हो रेडियो मनपसंद ऑन CMS कम्युनिटी रेडियो ऑन FM 91.1। और आप सुन रहे थे एक गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में ऑन द टॉपिक ऑफ अरुणा ईरानी। और जगदीश जी, आई थिंक अरुणा ईरानी के बारे में बहुत कुछ हम बात कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग, शायद एक यूनिक फैक्ट कह सकता हूँ, 2003 में एक जो एक ड्रामा थ्रिलर, आई थिंक कह सकते हैं ड्रामा थ्रिलर सीरीज थी, इट वाज अ फैमिली प्रोडक्शन। मेरे ख्याल से इनके जो भाई है, हर ब्रदर आदित्य ईरानी और अरुणा ईरानी, आई थिंक इट वाज अ जॉइंट प्रोडक्शन, एक ड्रामा सीरीज थी। और मुझे तो बहुत पसंद है तुम बिन जाओ कहाँ, और इसके लीड में थे दी डैशिंग सेलिब्रिटी विकास भल्ला। और तुम बिन जाओ का, जगदीश जी, मेरे ख्याल से आई थिंक दिस टाइटल वाज आल्सो यूज्ड फ्रॉम अ वेरी यूनिक, आई थिंक वाज एन ओल्ड मूवी और एन ओल्ड सॉन्ग टाइटल।
1: एक गाना था प्यार का मौसम फिल्म में, तुम बिन जाओ कहा, जिसे जिसके दो वर्षन थे। एक वर्षन किशोर कुमार का था जो भारत भूषण पर फिल्माया गया था, और दूसरा था रफी का जो शशि कपूर पे। तो इस गाने के दो वर्षन थे, वो बहुत ही पॉपुलर था, इसलिए शायद उसी लाइन को लेके उन्होंने ये उनके सीरियल का टाइटल रख दिया था।
0: जी हाँ, और ये जो सीरियल थी फ्रॉम अरुणा ईरानी और आदित्य ईरानी, मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम, पहली बार, इट वाज अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। आई थिंक हिंदी सीरियल्स में इट वाज अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट, यू नो, जो सास बहू, लेकिन ये जो आई थिंक टॉपिक, इट वाज शायद एक स्मॉल सुपरनैचुरल एलिमेंट और रीबर्थ और ड्रामा, इट वाज अ वेरी वेरी यूनिक प्रोडक्शन, और आई स्टिल रिमेंबर, इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग।
1: और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अमिताभ बच्चन तो सुपरस्टार बने जंजीर के बाद, मगर शायद आप जानते होंगे कि अरुणा ईरानी ने उनके साथ दो बार एज अ हीरोइन रोल किया है। एक फिल्म थी संजोग, जो आई थी 1971 में, और जिसमें ऑफ कोर्स दो हीरोइंस थी, एक तो थी बहुत ही मशहूर अदाकारा माला सिन्हा और अरुणा ईरानी, और दूसरी फिल्म थी वो कॉमेडी फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा, उसमें भी वो अमिताभ बच्चन की हीरोइन बनी थी। मगर आई थिंक बाद में अमिताभ बच्चन शायद सुपर स्टार बनने के बाद शायद वो अरुणा ईरानी को भूल गए, नेवरदलेस वो उन्होंने अपना करियर तो बनाया एज एन कैरेक्टर आर्टिस्ट और बाद में टीवी सीरियल्स, और शी इज़ अ गुड डांसर एज वेल। उनका कहना है कि उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की क्योंकि कर नहीं सकी, क्योंकि वो बहुत ही भाई बहन थे और उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी, तो उनको बचपन में ही फिल्मों में रोल करना पड़ा और पैसा कमाना पड़ा। तो जैसे मैंने कहा, उन्होंने पहली बार काम किया था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट गंगा जमुना में, जिसमें थे दिलीप कुमार, वैजयंती माला, और दिलीप कुमार के सगे भाई नासिर खान, जो फिल्म में भी उनके भाई बने थे, और इसी फिल्म को लेके आगे चलकर दीवार फिल्म बनी थी, वही थीम था।
0: जी हाँ, और अरुणा ईरानी की और जब बात करते जगदीश जी, नॉट ओनली बॉलीवुड हिंदी सिनेमा, लेकिन शी वाज वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि वो काफी रीजनल सिनेमा में भी काम किया था, फ्रॉम कन्नड़ा, पंजाबी, मराठी और गुजराती सिनेमा, क्योंकि वो हमेशा कहती है आई एम मल्टीलिंगुअल, आई एम अ लिंग्विस्ट, और वो बहुत सारे भाषा में बात कर सकती है। तो चलिए, आई थिंक ऑन दैट नोट, आई थिंक एक हिट गाना सुनते हैं, और आई थिंक जगदीश जी, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ डिस्कशन अबाउट दिस सॉन्ग, क्योंकि आई थिंक मैं ये नहीं कह रहा ओल्ड, लेकिन द नॉट सो यंग जनरेशन अप्रिशिएट दिस वर्जन, और द यंगर जनरेशन अप्रिशिएट द रीमेक्स, बट आई थिंक हम गाना सुनेंगे और आई थिंक आप डिसाइड कर सकते हैं।
1: यस यस, क्योंकि इसका रिमिक्स आया था तो मुझे थोड़ा लगा था कि अरे अरे अरे क्या हो रहा है ये, तो ओरिजिनल गाना सुनते हैं पहले।
0: हाँ चलिए।

0: जी हाँ श्रोता, वेलकम बैक। आप सुन रहे हो रेडियो मनपसंद। और जगदीश जी, एक काफी खूबसूरत गाना कलियो का चमन, और आई एम श्योर ओवर द इयर्स देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ डिस्कशन अबाउट दिस सॉन्ग, क्योंकि मेरे ख्याल से दिस इज अ कंपोजिशन बाय बप्पी लहरी जी।
1: और
0: ऑफ कोर्स हम डिटेल्स में नहीं बात करेंगे, लेकिन एक यूएस आरएनबी हिप हॉप ग्रुप था एडिक्टेड, और उन्होंने ये गाना, दे यूज द ओरिजिनल ट्रैक और दे एडेड देयर ओन वर्जन, एक स्क्रैच करके दे मेड देयर ओन मिक्स ट्रैक। और काफी साल एक यूएस कोर्ट में ये केस चल रही थी, और बप्पी लहरी वॉज वेरी एडमेंट ही वॉज गोइंग टू विन द केस एंड क्लेम कॉम्पेंसेशन। पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन आई थिंक ही वॉज डीपली डिस्टर्ब, क्योंकि ये गाना कलियो का चमन वॉज क्लोज टू हिज हार्ट।
1: और इसके बाद और एक इसका रिमिक्स आया था, तो वो भी सुपरहिट हुआ था,
0: शाश्वती वो जो सिंगर थी, हाँ।
1: बहुत सुपरहिट हुआ था। बट मुझे तो ये ओरिजिनल गाना ही पसंद आता है, क्योंकि लता जी है, लता जी के साथ कौन कॉम्पीट कर सकता है
0: जी। हाँ, और आई थिंक लता जी, ऑफकोर्स देयर इज नो कंपैरिजन टू लता जी, लेकिन एक इंटरव्यू में आई थिंक किसी ने पूछा था उनको कि लता जी आपके व्यूज क्या है इस बारे में, क्योंकि किसी ने पूछा था कि ये आपके इतने क्लासिक हिट्स है, इसके रिमिक्सेस बनाते हैं, तो फॉर अ सेकंड शी वॉज ब्लैंक कि आई थिंक ओवर हर लेजेंडरी करियर शी हैज डन सो मेनी हिट सॉन्ग्स, फॉर अ सेकंड शी पॉज्ड, और एक्चुअली मुझे याद नहीं है कौन सा गाना है कलियो का, अच्छा शी फ्रोज, बट ऑफ कोर्स हम व्यूज जानते हैं, बट आई थिंक शी हैज जस्ट लर्न टू लेट इट ऑल गो।
1: चलिए अब और एक गाना सुनते हैं, एक बहुत ही अलग गाना है और फिल्म है कुदरत, ये आई थी 1981 में। इसमें ऑफ कोर्स ये बिग स्टार कास्ट वाली फिल्म थी, राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, राजकुमार, विनोद खन्ना, प्रिया राजवंश और अरुणा ईरानी। और इसमें एक गाना था जिसके दो वर्शंस थे, एक तो किशोर कुमार का था और दूसरा था मशहूर क्लासिकल सिंगर परवीन सुल्ताना की आवाज़ में। तो किशोर कुमार का गाना ज़्यादा फेमस हुआ था, पर यह गाना भी उतना ही बढ़िया है, परवीन जी ने ऐसा गाया है कि पूछो मत। और सरप्राइजिंगली ये गाना अरुणा ईरानी पर फिल्माया गया है। मैं हमेशा सोचता था कि आइदर ये हेमा मालिनी पर होगा या प्रिया राजवंश पर, पर यह क्लासिक गाना फिल्माया गया है अरुणा ईरानी पर। और महान गायिका क्लासिकल सिंगर परवीन सुल्ताना की आवाज़ में सुनते हैं, संगीत था आर डी बर्मन का, एक क्लासिक गाना। तो चलिए सुनते हैं ये हमें तुमसे प्यार कितना, बहुत ही बढ़िया गाना है।

0: हाँ दोस्तों, ये गाना भी आपने सुना, बहुत ही एक बढ़िया गाना था और जिसे गाया था मशहूर क्लासिकल सिंगर परवीन सुल्ताना ने, और ये फिल्माया गया था अरुणा ईरानी पर। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। और निखिल, मैं आपको एक सवाल करने वाला हूँ। संजय दत्त को आप जानते हैं?
1: जी हाँ, उनके कौन नहीं जानते।
0: सब लोग जानते हैं, सारी दुनिया
1: हाँ।
0: जानती है, पर आप उनकी मदर को जानते हैं?
1: ऐसा लग रहा है जगदीश जी, आई थिंक हम ऐसा लग रहा है कि हम खेल रहे हैं बिट ऑफ सेलिब्रिटी ट्रिविया। आई थिंक मैं कॉन्फिडेंटली बताऊंगा नरगिस जी।
0: नरगिस उस जमाने की एक बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस थी, और उनका देहांत हुआ था आज ही के दिन 1981 में। शी हैड पेनक्रियाटिक कैंसर और उनका देहांत हुआ था। तो उन्होंने ऑफकोर्स एक, उनकी करियर तो बहुत लंबी नहीं थी, पर जितनी भी करियर थी उसमें उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किए, बढ़िया काम किया था। और ज़्यादातर फिल्में उन्होंने राज कपूर के साथ की थी, और एक से बढ़कर एक फिल्में उन्होंने की थी। उनकी एक फिल्म आई थी 1949 में जिसका नाम था अंदाज। इस फिल्म में उनके दो हीरो थे, दो हीरोज़ थे यानी दिलीप कुमार और राज कपूर। और दिलीप कुमार और राज कपूर ने एक ही फिल्म में एक साथ काम किया है, और वो है अंदाज। तो एक लव ट्रायंगल वाली फिल्म थी। ये फिल्म के बाद उन्हें बहुत ही शोहरत मिली, बहुत ही इनका बढ़िया काम था इसमें, और इस फिल्म के गाने बहुत ही बढ़िया थे। बाद में एक फिल्म आई थी बरसात, ये राज कपूर की फिल्म थी, और इसमें भी गाने बहुत बढ़िया थे, और नरगिस थी, निम्मी थी। तो इस फिल्म में भी नरगिस को इस फिल्म के बाद बहुत ही नाम मिला। फिर राज कपूर की फिल्म आवारा आई थी, ये भी एक बढ़िया फिल्म थी। बाद में उन्होंने कई सारी फिल्में की, ज़्यादातर जैसे मैंने कहा राज कपूर के साथ। और एक फिल्म थी श्री 420, उसके गाने तो सब बढ़िया थे। तो अभी एक उनका एक आइकॉनिक गाना सुनते हैं श्री 420 फिल्म से।
1: और जगदीश जी, ये गाना मुझे भी

0: अभी आपने ये आइकॉनिक गाना सुना, फिल्म थी श्री 420, और अगर आपने इसका वीडियो देखा होगा तो जब नरगिस जी कहती है मैं न रहूंगी तुम न रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियां, तब तीन छोटे छोटे बच्चे नज़र आते हैं और वो थे रणधीर कपूर, रितु नंदा यानी उनकी बहन, और ऋषि कपूर। छोटे छोटे बच्चे नजर आते हैं इस गाने में।
1: ओहो, तो जगदीश जी, आई थिंक ऐसा लग
0: रहा है कि फिर भी रहेगी निशानियां।
1: वाओ, आई थिंक आपने ये इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर की थी। आई थिंक ये गाना मुझे रिवाइंड करना, देखना पड़ेगा।
0: देखना पड़ेगा, यस। छोटे छोटे बारिश में शूट किया गया है ये गाना।

0: तो बहुत एक इंटरेस्टिंग गाना है.
1: ब्यूटीफुल ट्रैक. जी हाँ, तो चलिए आई थिंक जगदीश जी, लेट्स मूव ऑन टू आई थिंक हमारा लास्ट जो बर्थडे सेगमेंट है.
0: हाँ.
1: और आई थिंक मूविंग ऑन टू अनुष्का शर्मा.
0: यस.
1: और जैसे जानते हैं आप, रिसेंटली she has I think ye nahi karunga, ye aisa nahi kehna chahiye ki wo she has resigned from Bollywood, lekin ek Bollywood se ek short break liya hai. Aur she has now married cricketer or ex-cricketer Virat Kohli and now settled in London with their kids. Aur inke bare mein hum baat karenge kyunki inka janmdin hai 1 May 1988. Aur jaise hum jante hain, she is a very talented actress, ek producer aur ek entrepreneur. Aur unki debut film thi रब ने बना दे जोड़ी. और आई थिंक शी रोज टू फेम विद दिस फिल्म. और इसके बाद शी एक्टेड एंड प्रोड्यूस सेवरल फिल्म्स एज वेल. और आई थिंक एक्टिंग के साथ साथ नॉट ओनली ऑन द बॉलीवुड स्क्रीन बट शी इज क्वाइट एक्टिव ऑफ स्क्रीन एज वेल, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कंपनी जो है ही, जैसे आप जानते हैं, क्लीन स्लेट फिल्म्स. और ऑफ स्क्रीन शी इज अ वर्सटाइल परफॉर्मर, शी इज अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन. और आई थिंक एक्टिंग के साथ साथ शी इज हेवीली इनटू फोटोग्राफी. और एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट है, क्योंकि उनको कहना है कि हम एनिमल्स को मारना नहीं चाहिए और वो वेजिटेरियन है. एंड ऑफ कोर्स वी आर ऑल एंटाइटल्ड टू आवर ओपिनियंस, बट आई थिंक एनिमल्स के बारे में शी इज क्वाइट वेरी पैशनेट अबाउट हर व्यूज अबाउट सपोर्टिंग एनिमल्स. और आई थिंक जगदीश जी, हमेशा हम वी हैव ऑलवेज लिसन टू फास्ट ट्रैक्स, एवी एवी और काफी कैची नंबर्स थे, लेकिन आज क्यों ना हम एक सॉफ्ट नंबर सुनते हैं फ्रॉम द सेम फिल्म बैंड बाजा बारात. एक गाना है आधा इश्क, श्रेया घोषाल की आवाज में. मेरे ख्याल से इट्स अ सॉफ्ट और वेरी स्वीट नंबर. तो क्यों ना ये गाना सुनते हैं.
0: यस.

जी हाँ श्रोता, वेलकम बैक. आप सुन रहे हो रेडियो मनपसंद ऑन एफ एम 91.1, और आप सुन रहे थे एक गाना फ्रॉम द रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जो 2010 साल में आई थी. जगदीश जी, आप तो मालूम है, ऑफ कोर्स बैंड बाजा बारात, और द डायरेक्टर वाज द वेरी डैशिंग मनीष शर्मा जी. और अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह, आई थिंक अ वेरी वेरी डैशिंग, वेरी लाइवली कॉम्बिनेशन, मुझे तो बहुत पसंद है. और नेक्स्ट जो गाना है जगदीश जी, ऑन द टॉपिक ऑफ अनुष्का शर्मा, हम सुनेंगे अ डिफरेंट यशराज फिल्म, बट मेरे ख्याल से सेम कॉम्बिनेशन और काफी अदर एक्टर्स भी है. लेकिन आई थिंक द मेन कॉम्बिनेशन इज अगेन विथ रणवीर सिंह. This film Ladies versus Ricky Bell, एक कॉमेडी फिल्म थी. आई थिंक ही हैड अ बिट ऑफ अ, आई वुडन्ट से मीन स्ट्रीक, लेकिन एक कॉमेडी. और आई थिंक मेरे ख्याल से ऑल द लेडीज दे टीच हिम अ लेसन इन द एंड. और अनुष्का और रणवीर एक लाइवली, आई थिंक धमाकेदार कॉम्बिनेशन. और रणवीर सिंह, आई थिंक और ज्यादा डिस्कशन के बारे में कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आई थिंक ही हैज येट अगेन शॉट टू सेंटर स्टेज, चेंजिंग हिज इमेज ऑल टुगेदर विथ द धुरंधर फिल्म सीरीज. लेकिन आई थिंक कमिंग बैक टू अनुष्का शर्मा, सुनते ये एक कैची डांस नंबर है, थगले फ्रॉम दी कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी लेडीज वर्सेस रिकी बेल. और विशाल ददलानी, सलीम सुलेमान और श्वेता पंडित, मेरे ख्याल से दिस इज अ वेरी वेरी कैची कॉम्पोजिशन. तो चलिए जगदीश जी, ये गाना सुनते फ्रॉम लेडीज वर्सेस रिकी बेल.

0: अभी आपने एक बहुत ही धमाकेदार गाना सुना। और दोस्तों, अब हमारे प्रोग्राम का समय ख़त्म होने जा रहा है और हम मिलेंगे मंगलवार की शाम को 7 बजे। और तब तक और जाते जाते आपके लिए गाना छोड़े जाते हैं, फिल्म है जब तक है जान, और इसका एक गाना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मेरी और निखिल दोनों का ही पसंद का गाना है, और जिसे नीति मोहन ने गाया है, बहुत ही बढ़िया गाना है।
1: तो ये गाना है जी आर ए,
0: बहुत ही बढ़िया गाना है। तो मिलेंगे मंगलवार की शाम को 7 बजे, तब तक मैं कहता हूँ गुड बाय, सायोनारा,
1: अलविदा, टेक केयर। और जगदीश जी, डोंट फॉरगेट, अगर आप रिपीट टेलीकास्ट सुनना चाहते हैं तो यू कैन लिसन ऑन द रेडियो मनपसंद ऐप दिस आफ्टरनून।
0: या
1: चलिए, गुड बाय
0: गुड बाय।

0: तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट इरम और मेरे साथ हैं आज सहर और समीना। हम अपने उर्दू स्कूल का रेडियो प्रोग्राम आओ बात करें के साथ हाजिर हैं। आप ये प्रोग्राम FM 91.1 पर सुन रहे हैं जो हर इतवार की शाम को 6 बजे पेश किया जाता है आपके शहर कैनबरा से। और अपने तमाम सुनने वालों को नया साल मुबारक। हम सब के लिए दुआगो हैं कि ये साल सबके लिए बाइस रहमत, खुशियों और अमन का साल हो।
1: आमीन।
0: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
0: हाँ जी, छुट्टियाँ कैसी गुजरी सबकी?
2: छुट्टियाँ बहुत अच्छी गुजरी और एक एडवांटेज ये हो गया कि बहुत सारी हमारे कम्युनिटी में और फैमिली में शादियाँ थी, तो शादियाँ जो है वो छुट्टियों के या तो पहले गुजरी या छुट्टियों के बाद, तो छुट्टियाँ बहुत रिलैक्सिंग रही। हम लोग कैनबरा में ही थे ज्यादातर वक्त, मौसम इतना अच्छा था, गर्मी भी सही की पड़ी
0: जी, दफा बहुत गर्मी,
3: इतनी गर्मी कभी कभी होनी चाहिए। जो सर्दियों का कैनबरा में एक होता है उसको थोड़ा ब्रेक मिले,
2: तो वो एंजॉय किया। बल्कि एक पॉइंट मेक किया कि रोज निकलें शाम में वॉक करें, लंबे दिन होते हैं तो वैसी जान में जान आती है बंदे के, तो अच्छा वक्त गुजरा।
0: समीना आप बताइए, आपकी कैसी छुट्टियां गुजरी?
3: अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह बहुत रिलैक्सिंग, और शुक्र है कि वो एक ये नहीं था कि सुबह उठ के एक रूटीन जो है वो शुरू करनी है, बड़े रिलैक्सिंग तरीके से बच्चों के फेवरेट ब्रेकफास्ट वगैरह बनाए जो जो उन्होंने खाना था, और थोड़ी आउटिंग भी हो गई उनकी और अच्छा रहा बहुत।
0: बेशक आप घर के काम करते हैं लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं कि हाँ कि ऑफिस नहीं जाना या कोई नॉर्मल रूटीन से आप हट जाते हैं थोड़ा सा।
2: वो जो एक लिविंग आउट ऑफ अ चेकलिस्ट होता है ना एजेंडा के तहत, वो मैंने बड़ा एंजॉय किया कि किसी भी वक्त दोपहर में भी आप कोई मूवी देख ले, रात शाम में वॉक पे चले जाए, रात में कोई ड्रामा देख लिया।
0: ऐसी मसरूफियत और कुछ रिलैक्सेशन के साथ मेरी भी छुट्टियां समझ लें ऐसी ही गुजरी हैं। कुछ घर के काम हुए, कुछ वही शादियां अटेंड की, तो अच्छा रहा, अच्छा रहा। और मौसम पिछले 3 दिन तो बहुत गर्म था लेकिन अच्छा एंजॉय किया।
3: शुक्र है कि थोड़ा सा
0: आज बेहतर हो गया जी।
3: और वैसे ना छुट्टियों में काम करने का भी बहुत मजा आता है
0: जी।
3: ऐसा आपको लगता है? मैं बहुत एंजॉय करती हूँ घर के काम करने का भी, इवन आप काम कर रहे हैं लेकिन बहुत एंजॉय करते हैं आप उसको, उस टाइम को ना।
2: मैंने अपना गैराज साफ कर लिया, यू नो बहुत चीजें स्प्रिंग क्लीनिंग जो आप कर रहे हो,
3: बिल्कुल मैंने भी,
2: फ्रिज भी डीप क्लीनिंग जो आप सोचती है, क्लोजेट्स में अपने गो थ्रू करते हो चीजों को, तो इस तरह के काम हो जाते हैं जो सारे साल नहीं हो पाते,
3: पेंडिंग पड़े होते हैं। और खास तौर पर मुझे ये होता है कुछ ऐसी स्पेशल डिशेज होती हैं कि जो आप रिलैक्स ही बनाना आपको अच्छा लगता है, तो वो आप छुट्टियों में एंजॉय करते हैं।
2: बल्कि कैनबरा तो काफी खाली हो जाता है, सभी निकल जाते हैं छुट्टियों पे, तो मुझे लगता है ये टाइम पे जो गेट टुगेदर्स भी होते हैं वो बड़े मीनिंगफुल होते हैं क्योंकि आप कम गैदरिंग्स कर सकते हैं, छोटी गैदरिंग्स कर सकते हैं
3: और ज्यादा टाइम दे
2: सकते हैं।
3: सही, तो वैसे ये हमारा 2026 का पहला प्रोग्राम है, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, देखते हैं कि हमने 2025 में क्या किया था,
2: क्या खोया,
3: क्या पाया, क्या खोया, क्या पाया और आगे क्या पाने के इरादे हैं। तो इसको लेके चलते हैं, आप कुछ बताएंगी 2025 के हवाले से, उर्दू प्रोग्राम और आपके अपने हवाले से।
0: उर्दू प्रोग्राम, हाँ जी, हमने लास्ट मई में शुरू किया था और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता हमने सीखी हैं।
2: बिल्कुल।
0: और जो मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा ये भी लगा कि मैं और सहर तो पहले से आशना थे लेकिन हमारी शनासाई जो है वो समीना, मुनीजा और आयशा से हुई।
2: बेशक।
0: और एक बड़ा अच्छा हमारा जिसको कहते हैं ताल्लुक बना और वो बड़ा अच्छा लगा रेडियो के अच्छी कंपनी मिली, आउटकम बड़ा अच्छा और बड़ी, जैसे आपने कहा ना, ड्रीम टीम है।
2: बिल्कुल।
0: तो और एक दूसरे का जिसको कहते हैं हमने एक इज्जत और मोहब्बत का जो रिश्ता कायम किया है ना वो बहुत अच्छा है।
2: बिल्कुल। और सबकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, तो वो यू नो जो वो ब्रिंग टुगेदर होती है, जो डाइवर्सिटी आती है, पर्सपेक्टिव्स आते हैं, तो वो बड़ा मजा आता है। और कोई ऐसा नहीं सोचता अक्सर, बल्कि क्योंकि इट्स अ फ्यू ऑफ अस, तो किसी ने छुट्टियों पे भी जाना है तो यू नो एक फॉल बैक ऑप्शन है हमारे पास।
0: जी बिल्कुल।
2: बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं, फिर हम डिस्कशन करते हैं, जो प्रोसेस है ना उसको तो एंजॉय करते, प्रोग्राम तो करते ही है लेकिन प्रोसेस जो जर्नी
3: बैक एंड पे जो सामने नहीं सुनते लेकिन वो भी बड़ा हमारा एंजॉय करने वाला,
0: एंजॉय करना, और जो चीजें हमारे सुनने वालों को नहीं पता चलती है वो चीजें हम स्टूडियो में एंजॉय करते हैं।
2: एक बंदा कहीं कुछ इसी परेशानी में होता है, दूसरा जल्दी से उसको फिक्स करता है, टेक्निकल ग्लिचेस को, बच्चों को इकट्ठा करना, मेहमानों को गेस्ट लाइन अप करना, उन पे रिसर्च करना, सवाल जवाब प्रिपेयर करना, तो एक बड़ा प्रोसेस है लेकिन अल्लाह का शुक्र है बड़ी इसमें लर्निंग भी है, डेवलपमेंट भी है, आई थिंक कम्युनिटी को इकट्ठा करने का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है
0: जी। बहुत सारे लोगों को ऐसे मुतारिफ कराया
3: जी जी, वही मैं कहने लगी थी कि कम्युनिटी के कितने लोग हैं जिनके बारे में अब हम जानते हैं और वो अपनी फील्ड में कैसे गए, एक्सपर्टीज उन्होंने शेयर की और किस तरह से गाइडेंस दूसरी कम्युनिटी के लोगों को मिली जो के जो अभी आ रहे हैं इस डिफरेंट फील्ड्स में या जो नेक्स्ट जनरेशन है जो अपने लिए कोई पास डिसाइड करना चाहते हैं, तो इस सुनने से उनको बहुत फीडबैक मिला होगा कि वो उन्हें क्या करना है अपनी लाइफ में। और माशाल्लाह से मेरा हाल है एक वैरायटी हमने प्रोग्राम्स में जो गेस्ट आए हैं, ये नहीं कि हम किसी खास फील्ड से बुलाते रहे हैं, डिफरेंट फील्ड से लोग आए हैं और माशाल्लाह मुझे ये ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग कितना फ्लोरिश कर रहे हैं और कितना अपनी फील्ड में आगे बढ़े हुए हैं
0: जी। और जो मुझे लगता है मुख्तलिफ चीज़ें हमारे प्रोग्राम में बच्चों का सेगमेंट
3: जी बिल्कुल,
0: तो पहले आज तक रेडियो प्रोग्राम में ऐसे नहीं हुआ कि एक सेगमेंट हम बच्चों के लिए करते हों, तो बच्चों ने भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया हमारे साथ। मुझे वो एक बच्ची याद आ रही थी, मुझे उनका नाम भूल गया, जिन्होंने वो प्यासा कवा सुनाया था हमें, वो इतनी प्यारी उन्होंने क्यूट स्टोरी सुनाई थी। और बच्चों के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी बच्चे बन जाएं उनके लिए, तो ये चीज़ें बहुत सीखी हैं एक दूसरे से और अभी भी सीख रहे हैं हम, होपफुली कि आगे भी हम ऐसे ही चलेंगे। और सभी जानते हैं कि जो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो थी वो हमारा अवार्ड था
2: जी, बेस्ट इमर्जिंग रेडियो प्रोग्राम,
3: वो भी विद इन 5-6 मंथ्स,
0: विद इन 5-6 मंथ्स,
2: वो बहुत अपलिफ्टिंग था, उसने हमें बहुत इनकरेज किया, उससे पता चलता है कि प्रोग्राम सुना जा रहा है और फिर फीडबैक जो मिला, तो उसके लिए हम सभी सुनने वालों के बहुत शुक्रगुजार हैं, CMS एज एन ऑर्गेनाइजेशन के बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें रिकॉग्नाइज किया हमारी एफर्ट्स को,
3: अपॉर्चुनिटी दी हमें बात कर सके अपनी के साथ। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे ये लगता है कि इमर्जिंग प्रोग्राम का अवार्ड मिला लेकिन कोई भी हम में प्रोफेशनल आरजे नहीं है, एंड दैट इज लाइक कि हम सब ने ट्राई किया एक नई चीज को, और जैसे हम भी शुरू में बात कर रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह टीम हमारी ऐसी है कि हर एक की स्ट्रेंथ है, तो वो जब मिल के जब कुछ चीज बनती है तो वो निकल आता है और हम सब इसको एंजॉय कर रहे हैं, इवन कि हम प्रोफेशनली आरजेस
0: नहीं है।
2: आई थिंक वो एक दूसरे का कहना चाहिए ना, एक ईज ऑफ वर्किंग विद ईच अदर है,
0: बिल्कुल
2: बस उसका एक मजा अपना रहता है,
0: बिल्कुल
2: बाकी लर्निंग ऑन द जॉब भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी हमारे कुछ यू नो प्लान्स हैं। तो 2025 की अचीवमेंट्स थी, कई प्रोग्राम्स बहुत ही पसंद किए गए, बहुत ज्यादा सुने गए, वो हमें ऐसे पता चलता है कि जब हम सोशली लोगों से मिलते हैं तो वहाँ से फीडबैक आता है, कुछ जो हमारे कॉन्टेक्ट जिनके पास हैं वो हमें रीच आउट करते हैं, तो बहुत हमारा दिल बढ़ जाता है, यू नो हमारा वर्थ इट हो जाता है सारी एफर्ट जो हम कर रहे हैं। लेकिन इसी हवाले से क्योंकि अब 2026 की शुरुआत हो गई है तो कुछ फ्यूचर प्लान्स भी हैं हमारे, और उसी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट कदम है क्योंकि ये हमें महसूस होता था कि एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना है हमें, एक फीडबैक का कंटिन्यूस लूप अपनी कम्युनिटी के साथ, तो हमने अभी फेसबुक पेज लॉन्च कर दिया है CMS उर्दू रेडियो का, तो आप सब जो सुन रहे हैं, जो हमें लाइव सुनते हैं, जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम सुनते हैं, आप ज़रूर उस पेज को लाइक कीजिए और हमसे कनेक्ट हुइए
3: और अपना फीडबैक दें और कमेंट कुछ सजेशन अगर आप देना चाहें तो वो जरूर,
2: आपको कोई चीज पसंद आई या आप कुछ बेहतरी चाहते हैं, आप अपने चाहते हैं कि बच्चे प्रोग्राम का हिस्सा बने, आप खुद आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है, कोई ऐसी स्किल है जो आप चाहते हैं कि आप आके बात करें उसके बारे में, आप कोई किताब लिख रहे हैं, किसी भी शोबे से मुंसलिक हैं, कोई नुमाया काम कर रहे हैं जो फायदा हो हमारी कम्युनिटी को जान के, तो आप उस पेज के थ्रू भी हमसे राबता कर सकते हैं, जो सोशली हमें जानते हैं वो वैसे हम سے رابطہ کریں تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا.
3: بالکل, جو سن رہے ہیں وہ کیا سننا چاہتے ہیں یہ ہمیں ایک طرح سے آئیڈیا ہو جائے گا, اور یہ ایک کنیکشن بہت اچھا. یہ آپ نے جو نیوز بریک کی ہے فیس بک کی وجہ سے, اور میرے حال میں ہماری کمیونٹی میں فیس بک ایسی چیز ہے جو ہر کوئی یوز کرتا ہے, تو وہ آرام سے ہمیں کامنٹس کریں اور بتائیں, اپنی فیڈ بیک دیں کہ وہ کیا سننا چاہتے ہیں اور کچھ اس طرح سے.
2: ضرور, اور گوئنگ فارورڈ ہم یہ کریں گے کہ اس کی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کہ جو بھی ہمارے پروگرامز ہوا کریں گے ریکارڈیڈ, اس کا لنک ہم پھر فیس بک پیج پہ بھی, ویسے تو سی ایم ایس کی اپنی ویب سائٹ پہ آتا ہی ہے لیکن فیس بک پیج پہ بھی ہوگا تو اس سے زیادہ لوگ سن پائیں گے.
3: بلکہ چھوٹے چھوٹے کلپس بھی ہم, ویڈیو کلپس بھی ریکارڈ کر کے کہ ہم اسٹوڈیو میں کتنا انجوائے کرتے ہیں,
2: اور ان تمام گیسٹس کا, فیملیز کا, ان بچوں کا بہت شکریہ جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے لاسٹ پورے سال میں, اور ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے گا اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے ان شاء اللہ. 2026 بھی یو نو ہم اور کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا
3: انشاءاللہ. اور میں کہتی ہوں کہ بچوں کا خاص طور پہ جو سیگمنٹ, اور جس طرح سے بچوں نے آ کے کانفیڈینٹلی بولا, وہ شائع نہیں ہوئے اور انہوں نے بہت اچھے سے ہر ایپیسوڈ جس میں بھی بچوں کا سیگمنٹ تھا وہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کیا, اور یہ بہت انکریجنگ ہے کیونکہ مین مقصد ہی اس پروگرام کا اردو کا فروغ ہے, خاص طور پہ نیکسٹ جنریشن کو جن کو اردو صحیح سے نہیں آتی اور وہ سیکھنا چاہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر تھا کہ ان کے کانفیڈینس کو بلڈ اپ کرنا, اور میرے اپنے بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں, اور ابھی مجھ سے میری بڑی بیٹی پوچھ رہی تھی کہ اب دوبارہ اسکول کب کھلے گا, تو اٹ مینس کہ شی از مسنگ, کہ اس کو اچھا لگ رہا ہے اردو بولنا سیکھنا. اور
0: مجھے لگتا ہے ہماری اپنی وکیبلری بھی کافی بہتر ہوئی ہے, بہت ساری چیزیں لکھنی بھول گئے تھے ہم بھی کیونکہ لکھنا نہیں ہوتا اردو میں, اور پڑھنے میں بھی, تو وہ اب ہمیں مجھے بھی لگتا ہے کہ تھوڑی بہتر ہو گئی ہے اردو ہماری بھی.
2: بالکل, زبان جیسے کہتے ہیں ایک مسل کی طرح ہے, جتنا زیادہ رائٹنگ ہو گئی یا لینگویج کا استعمال ہو گیا بول چال, تو وہ جتنا آپ اس کو یوز میں لائیں گے اتنی فراوانی آتی جائے گی, اتنی کھل جائے گی, نکھار آئے گا.
3: مجھے یاد ہے شروع کے پروگرامس میں اسٹرگل ہوتی تھی نا اردو کے ورڈ کو انگلش میں نکالنا ہے اور اردو زیادہ بولنی ہے, لیکن اب فلوئنسی آ گئی ہے.
2: اور آئی تھنک یہی اسٹرینتھ بھی ہے کہ ایک تو دیکھیں ہمارا پروگرام کا فارمیٹ بہت ہی میگزین فارمیٹ ہے, یو نو سلائس آف لائف ہے, ہر چیز, گانے بھی چل رہے ہیں, گیسٹ بھی آ رہے ہیں, بچے بھی آ رہے ہیں, پھر ہماری اپنی چٹ چیٹ بھی رہتی ہے, اور جو بھی بات چیت ہم کرتے ہیں وہ کانورسیشنل ہے, وہ کلوکیل ہم استعمال کر رہے ہیں جیسی اردو زبان آج کل بولی اور سمجھی جاتی ہے.
3: بالکل,
2: تو ہم بہت اس طرح سے اسی طرح
3: اردو نہیں بولتے کہ کسی کو سمجھ نہ آئے,
2: وہ ہمارے گیسٹ کے لیے بھی انکریجنگ ہے, بچوں کے لیے بھی انکریجنگ ہے, اور ابھی تو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے,
3: مجھے نا اس میں نصرت فتح علی خان کا ایک انٹرویو تھا, اور انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے انہوں نے قوالی کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے انٹروڈیوس کیا, تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ تھوڑا ہٹ کے کیوں گئے, تو انہوں نے ایک بات کی تھی کہ میں اپنی نیکسٹ جنریشن کو اپنی طرف لانا چاہتا ہوں, تو جب میں ان کو اپنی طرف لانا چاہتا ہوں تو مجھے چند قدم ان کے ساتھ چلنا پڑے گا تاکہ وہ میرے ساتھ واپس اس طرف آئیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اردو جو ہم اگر بہت ہیوی قسم کی بولیں گے تو جو نیکسٹ جنریشن ہے ان کے سر کے اوپر سے گزر جائے گی اور وہ کوئی اٹریکشن فیل نہیں کرے گی, اور وہ ہمیں بھی چند قدم ان کے ساتھ چلنا
0: پڑے گا. بالکل,
3: ان کو ان کا انٹرسٹ بلڈ کرنا ہے, اور اس کے بعد ان کو پھر سلولی سلولی جو ہے ہم سکیل قسم کی اردو جو ہے اس کی طرف لے کے آئیں گے.
2: چلیں تو اب ہم اپنے میرے خیال سے سامعین کو کوئی گانا سناتے ہیں اور پھر ملتے ہیں.
3: آج کل سارے ہی انجوائے کر رہے ہیں کچھ گانے, تو اسی میں سے ایک ہم چلاتے ہیں.

0: जी, मज़ा आ गया ये पाकिस्तान आइडल के मेडली सुन के. आजकल हम बात ही कर रहे थे कि कुछ शादियां यहाँ पे खासी रहीं, कैनबरा में भी, सिडनी में भी, तो और कुछ शादियां अब आगे होने भी वाली हैं. तो मैं कहूँगी कि जो बच्चे रिश्ते अजवाज से मुंसलिक हो चुके हैं, यानी जिनकी शादी हो चुकी भी है और जिनकी होने जा रही है, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक. और अल्लाह से दुआ है कि सब अपने अपने घर में हमेशा खुश रहें.
1: आमीन आमीन.
0: और मुझे ये लगा जैसे शादियां अटेंड करके कि कितना एक इवेंट मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व होती है. इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं, एक तो ऑन द डे के, फिर उससे पहले की जो तैयारियां हैं सारी. तो अक्सर मैं देखती हूँ कि बहुत सारे कैनबरा में ना ट्रेडीज़ ग्रुप हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे भी, वो कपड़ों से रिलेटेड होंगे, केटरिंग से रिलेटेड होंगे, लेकिन शादी ब्याह के जितने मामलात हैं कि कोई वीडियोग्राफर है, कोई फूलों की अरेंजमेंट कर रहा है, कोई हॉल डेकोरेटर है, कोई मेहंदी लगाने वाला है, कोई घर आके आपके बाल ही बना दे सारे मेहमानों के, क्योंकि यहाँ सब काम खुद करनी है. अगर आपके इंटर स्टेट से गेस्ट आके ठहरे में, आप किस किस को कहाँ कहाँ लेके पहुंचोगे? तो मैं तो ये कहूंगी, बल्कि एक आइडिया फ्लोट करूंगी कि कोई अगर एंटरप्राइजिंग ऐसे लोग हैं हमारी कम्युनिटी में तो इसकी भी कैटलॉगिंग शुरू कर दें, क्योंकि कैनबरा में वैसे ही कम है इस तरह के ऑप्शन. लोगों को अक्सर सिडनी, वुलोंगोंग जाके शादियां वो कर रहे हैं ताकि ऑप्शन उनके पास खुलें. लेकिन जो भी थोड़े बहुत हों, अगर उसका एक कैटलॉग मुरतब हो जाए तो बहुत लोगों का फायदा हो जाएगा.
2: बिल्कुल. और बल्कि इसकी सजेशन जैसे हमारे फेसबुक को भी वो हेल्पफुल होगा कि आप अपनी सजेशन डालें, और अगर कोई इस काम में इसके साथ मुंसलिक है तो वो जरूर, कोई भी चीज जैसे आपने मेंशन की,
0: इतनी चीजें हैं
2: तो जरूर वो इसमें कहें कि हम कर सकते हैं, तो हमारी वो एक कम्युनिटी के हवाले से वो फेसबुक एक कनेक्टिंग पॉइंट बन जाएगा.
0: वर्ड ऑफ माउथ से तो कोई कहीं जाता है, किसी को कोई चीज पसंद आती है तो पूछ ही लेते हैं, लोग बता देते हैं डीजे कहाँ से, ढोल वाला कहाँ से. लेकिन अगर और ज्यादा हम ऑर्गेनाइज हो जाएं तो फिर क्या ही बात है, कितना स्ट्रेस लोगों का कम हो जाएगा, एक हेल्प हो जाएगी.
2: बहुत बड़ा इवेंट और बहुत सारे मूविंग पार्ट्स.
0: दैट्स राइट. और बहुत ही आप समझो एक इमोशनली भी आपके लिए बहुत ड्रेनिंग है और ओवरवेल्मिंग है, और फिर साथ साथ ये सारे इंतजाम करना. जब पाकिस्तान में ये सारे मरहले होते हैं तो सब चीजें एस्टेब्लिश्ड होती हैं, बहुत से
2: काम करने वाले भी इतने लोग होते हैं ना, कजन्स मिल जाते हैं, अंकल आंटी वो सारे मिलके अपना करते हैं.
1: तैयार होके आपको शादी हॉल में जाना होता है और यहाँ पे आपको वही आप वाली बात की टेंशन्स लगी होती हैं, हॉल कैसे सेट करना है, ढोल वाला कहाँ से मिलेगा, ये सब.
0: और लेट भी नहीं हो सकते, तो टाइमिंग का भी बड़ा, टाइमिंग का भी जो बड़ी अच्छी बात भी है.
2: पाकिस्तान से ये मुख्तलिफ है कि हर चीज टाइम पे होनी होती है. अच्छा, वैसे शादियों का जब भी जहन में आता है तो आप लोगों को सबसे पहले क्या चीज जहन में आती है?
0: जोड़े. शादी किसी की भी हो, जोड़ों की मुसीबत हमें पड़ जाती है.
1: पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना,
2: वो तो है ही, जोड़े, जूते, ज्वेलरी, मैचिंग और एवरीथिंग और हेयर स्टाइल और ये सब. वैसे शादियों का सोच के जहन में, इसके अलावा, जोड़ों के अलावा, नेक्स्ट क्या जहन में आता है?
1: ढोलक, मेहंदी,
2: जबरदस्त
1: गाने, टप्पे. मुझे लगता है सबसे हल्ला गुल्ला वाला इवेंट जो है वो मेहंदी होती है.
0: बिल्कुल एंजॉयबल सबसे ज्यादा वही है,
1: वो आप जिसमें आप हल्ला गुल्ला कर सकते हैं
2: उसमें. बल्कि ब्राइड और ग्रूम भी थोड़े रिलैक्स होते हैं, दूल्हा दुल्हन भी, क्योंकि उस वक्त उनको वो ये टेंशन नहीं होती जाना है, तैयार होने, इट्स नॉट दैट बिग डे. वो बिग डे अभी आने वाला है, तो वो भी फिर इन चीजों को, मेहंदी को खास तौर पे, काफी एंजॉय कर लेते हैं.
0: क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया, शादी की बात हो ही रही है कि रिसेप्शन, वो रिसेप्शन जिनमें निकाह भी उसी वक्त होता है, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं और ज्यादा आपको अच्छा लगता है वहाँ पे मौजूद होना और शादी का एहसास होता है.
2: सही कह रही हैं.
0: बल्कि शादी की बात हो रही है तो ऐसे ही मुझे ख्याल आया, जब मेरा आदिल का निकाह हुआ तो जो हमारे मौलाना साहब थे वहाँ पे पाकिस्तान में, हमारा निकाह हुआ तो इतने वो कोई फनी और फ्रेंडली किस्म के थे कि जब निकाह के बाद दुआ हुई तो उन्होंने कहा कि जिन सबकी शादी होने वाली है और जो दिल में चुपके चुपके शादी की ख्वाहिश कर रहे हैं, तो वो इतना, बल्कि जो वाकई अगर किसी के रिश्ते की बात चल भी रही है तो सब हंस पड़े उस पे. तो वो बड़ा मजे का, फिर जब उन्होंने, वो होता ना कि कबूल है
1: जी,
0: तो वो अदील को कहा, मेरे से जाहिर एक सेपरेट होता है लड़की से, फिर लड़के की तरफ आते हैं, तो वो कहते हैं कि कबूल है, दिल की गहराइयों से कबूल है. तो سارا ہال ہنس رہا تھا عدیل کی بھی تو بڑی فنی میموریز ہیں بلکہ اتنے انٹینس مومنٹس بڑے لائٹ ہو جاتے ہیں
2: ہو سکتا ہے انہوں نے اسی لیے کیا ہو
0: ذرا ٹینشن کو
1: سب کی تسلی ہو جائے صحیح ٹھیک ہے نہیں چلے ہم وہی بات ہے ڈھولک گانوں کی بات ہو رہی ہے تو کیا خیال ہے ہم نے بہت دنوں سے اے بی سی گیم نہیں کھیلی
0: بلکہ میں منیزا کو بڑا مس کر رہی
1: یہ منیزا نے ہمیں انٹروڈیوس کرایا تھا سجیشن تھی کیا خیال ہے آپ کو کچھ یاد آ رہے ہیں کوئی گانے ایسے شادی بیاہ کے شروع کریں کوئی گانا اگر یاد ہے
0: تو اگر اے سے سوچا جائے تو آئی مہندی کی یہ رات
1: ارے سہل اور مہندی ابھی
2: شادیاں بنو تیرے بابا کی اونچی
1: ارے ٹپوں سے یاد آیا چٹا ککڑ
2: بنی یہ بڑا فیمس قسم کا ٹپا رہا
0: اور ابھی پاکستان آئیڈل سے ڈی دنیا تے پیار ملے کوئی دل دار ملے
2: ای سے
0: ایک تیرا پیار
2: ذہن میں نہیں آ رہا تھا آپ نے بول دیا
0: ایف سے
2: فلک تک چل ساتھ میرے
0: ہاں یہ ہے گانا جی سے
2: آج کل تو وہ پاکستان آئیڈل میں بھی ایک آیا یاد آ رہا ہے آپ کو مجھے یاد ہے ویسے میں بولتی ہوں لیکن
0: بڑا خوب گایا
2: ایسے ہی لگ رہا ہے
0: جواد بشیر کی آواز لگ رہی ہے وہ اچھا ایٹ سے
3: اچھا یہ میرا بڑا فیوریٹ ہوتا تھا ہوا
2: آئی
1: سے کیا تھا
0: ایک پل بھائی جانا
1: میرا فیوریٹ ہوتا تھا جیوے بن رہا عمر ساری
0: کالا ڈوریا کنڈے
2: سر آپ تو گا بھی بہت اچھا رہے
0: یہ تو پتا چلے گا جب سنیں گے
2: نہیں اچھا گا رہے ایل سے تو وہ لٹھے دی چادر بڑا فیمس ہے
0: ایم سے متھے تے چمکن وال
1: اور اس سے یہ بھی ہے نا میرے نیہر
0: سے آج مجھے آیا یہ پیلا جوڑا
2: این سے
0: اچھا وہ تھا نا ابرار کا نچ مجا جن نچ مجا جن
2: وہ بھی بڑا فیمس ہوا تھا
0: او سے
1: اچھی مجا جمال
0: زبردست سنگنگ ٹیلنٹ تو یہاں پہ بھی خوب ہے بھائی اب کسی ڈھولکیوں میں پکڑنا ہے آپ کو اچھا پی سے یہ اچھا یہ ہوتا
2: پی سے وہ پریتو میرے نال
0: ویاہ کر لے
2: یہ بھی اب اس کا برا تھا
0: اچھا کیوں سے کمیز تیری کالی
2: آگے ٹی آ گیا
1: نہیں آر ہے ہاں
2: آر سوری
1: آر سے ہم اپنے زمانے کا گانا آپ کو سناتے وہ گاتے تھے نا رسول پاک کا سایہ مبارک
0: ہاں اس سے سٹارٹ ہوتی
1: تھی جی
0: ایسے اچھا یہ بڑا مقبول گانا بھی ہوا ابھی ریسنٹلی اور پاکستان آئیڈل نے تو اس کو دوسرے ہی چار چار لگا دیے شکر بھنڈارے اچھا ٹی آ گیا
1: جی
2: یہ تو ٹپوں سے وہ نہیں آتا تھا ٹپیاں دی دے واری اور پھر وہ ٹپے شروع ہو
1: جاتے تھے ہاں جی ٹپیاں دی دے واری
0: اچھا یو سے یہ بڑا فیوریٹ ہے میڈم کا اڑتا دوپٹہ میرا مل مل دا تیرے اوتے
1: نہیں چل دا
0: اچھا وی سے
2: تو وہ لڑکے کی شادی پہ ویر میرا
0: گھوڑی چڑھیا ڈبلیو سے اچھا یہ بڑی ہم مشکل میں پڑ گئے لیکن بڑا مشہور ہے میرے خیال سے وشملے
1: جی ہاں
0: پشتو گانا
2: یہ پشتو ہے نا
0: میرے خیال سے بلوچی ہے کہ پشتو ہے
1: وشملے آئی تھنک پشتو ہے ہاں جہاں تک میرا خیال ہے میں بھی ہاں جی
0: چلے اس کو اسکپ ہی کر دیتے
2: ایکس سے ذرا مشکل ہے ایکس سے جب بھی آتا نا ذہن میں ایکس رے ہی آتا
0: اور کچھ نہیں ایکسٹرا لگا دو اچھا وائی سے यार डैडी,
2: ये अभी किसी ने गाया भी था, बहुत अच्छा गाया है,
0: बल्कि वो आई थिंक जज के तौर पे आई थी पाकिस्तान आइडल में, जी जी समथिंग बेग उनका कोई नाम है, नताशा बेग,
2: नताशा बेग,
0: बहुत बहुत अच्छा, बड़ी जोरदार उनकी आवाज भी है, और अच्छा जेड से
2: लो जी हम तो एंड पे पहुंच गए, हमें बहुत आता है भाई
0: चले अब ये तैयार, बल्कि अक्सर होते ना ढोलकियों में समझ ही नहीं आ रहे होते, तो ये एक तैयार हमने फर्रा बना दिया ए टू जेड तक का। चलिए फिर ऐसा करते हैं, शादी की बात हो ही रही है तो पाकिस्तान आइडल में कुछ पिछले दिनों जो एपिसोड थी उसमें शादी के ही और मेहंदी के गाने उन्होंने खूब गाए, तो अगर उसका कोई हम मेडली सुना देते हैं,
2: गर्ल्स का पहले सुनाते हैं,
0: हाँ जरूर जरूर,
3: लेडीज फर्स्ट
0: सही है।

तो पाकिस्तान आइडल की बात हो रही थी कुछ महीनों से मैं इसको फॉलो कर रही हूँ, मेरे ख्याल से हम सभी इसको फॉलो कर रहे हैं और क्या जबरदस्त इनिशिएटिव है और कहाँ कहाँ से टैलेंट निकल के आ रहे हैं, इतना अच्छा गा रहे हैं सब।

0: भूले बिसरे नगमे जो हैं वो हमें बहुत अच्छी आवाजों में सुनने को मिल रहे हैं.
1: बिल्कुल. और एक कल्चरल विरसा है हमारा जो उस जमाने में, जैसे एक जज ने भी ये बात नोटिस की, बिलाल मकसूद
0: जी
1: ने, कि पुराने गाने जो हैं वो उस तरह से रिकॉर्ड नहीं हुए थे, प्रिजर्व नहीं हुए थे.
2: अब तो उसकी साउंड क्वालिटी
1: इतनी अच्छी हो गई है, और ये नई आवाजों में अब जो हमारे जो बच्चे हैं तो उनको भी इंट्रोड्यूस होंगे वो इन गानों से और जुड़ेंगे इसके साथ.
0: बिल्कुल.
1: क्या शायरी है और क्या अदायगी है, मजा आता है देख के. बल्कि जजेस भी मैं कहूंगी इतने डिसेंट हैं, सबको ऐसा लगता है कि दे आर रूटिंग फॉर देयर सक्सेस, उनको इनकरेज करते हैं हमेशा, और बहुत अच्छे उनके कमेंट्स भी होते हैं,
2: इनकरेजिंग, और कनेक्शन एक होता है, और फेस एक्सप्रेशंस भी बड़े अच्छे,
1: जैसे वो एंजॉय कर रहे
2: हैं, फीडबैक देते हैं. एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी बात है इनकरेजिंग के. अगर कुछ खामियां हैं भी तो बड़े अच्छे तरीके से वो कहते हैं कि आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. मैंने कोई भी उनका बहुत नेगेटिव कमेंट नहीं देखा.
0: नहीं, नहीं, नहीं,
1: और कि किसी को पुट डाउन कर रहे हो या ह्यूमिलिएट कर रहे हो, ऐसा नहीं है.
2: ये बड़ी अच्छी बात है.
1: और बल्कि कंटेस्टेंट्स जो हैं वो हर समझे वॉक ऑफ लाइफ से हैं, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंट हैं इन देयर स्किन, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि चाहे एक तो थे बहुत अच्छा गा रहे थे, शायद अब वो टॉप 16 में नहीं है, वो डिलीवरी बॉय थे और बस वो शौकिया गा रहे थे, और क्या उनकी आवाज थी. तो मुझे ये भी देख के बहुत खुशी हुई कि ये प्लेटफॉर्म सबके लिए खुला है और पूरे पाकिस्तान से लोगों को इसने इकट्ठा कर दिया.
0: जी, जैसे लैया से वो लड़की है, मुझे उनका नाम भूल गया, सर, इतने छोटे छोटे शहरों से भी, छोटे छोटे टाउन से भी वो बच्चियां हैं. दो लोग हैं शायद लैया
1: से, मेरे ख्याल से जविश एक है, रविश रुबाब मेरे ख्याल से, वो लैया से है, गोटकी से है,
0: गोटकी से है,
1: अभी उन्होंने शकर वंडा गाया, मेहताब मेरे ख्याल से नाम है शायद.
0: तो और जजीज का जैसे मेरे तो फेवरेट वो हैं बिलाल मकसूद.
1: बिलाल मकसूद मुझे उनका ठहराव बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीनिंगफुल बात करते हैं जब करते हैं
0: जी,
1: तो मजा आता है.
2: उनका वो बात सुनने के बाद ना ऐसे वो लगता है जैसे थोड़े में बहुत ज्यादा है, वो बहुत थोड़ी बात, अल्फाज बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी बात का मफहूम बहुत
1: वजन ज्यादा है. ज़ेब बंगश इतना अच्छा बोलती है, उनको भी बस ऐसे लगता है कि बोलती रहे, सुनते रहे, बहुत सॉफ्टली बात करती है.
2: अच्छा, बड़ा मजा आता है देखते हुए राहत फतेह अली खान जब एंजॉय कर रहे होते हैं ना, तो वो बड़ा अच्छे खुल के एंजॉय कर रहे होते हैं जिस गाने
1: राग अलाप का. हाँ,
2: बड़ा मजा आता है वो, और वो फिर दूसरों को ऐसे इशारे करते हैं कि देखा वो कितना अच्छा गाया है, इशारों में वो दाद दे रहे होते हैं. उनकी तो अपनी बेटी की भी शादी है रिसेंटली देखी
0: हुई है,
1: सोशल मीडिया से पता चलता है, वही चीज
2: देखा कि काफी
0: उनकी भी और बिलाल मकसूद साहब की भी बेटी का निकाह हुआ है
1: जी, और शायद फवाद खान की कोई एनिवर्सरी हुई है, वेडिंग एनिवर्सरी.
0: अच्छा,
1: वो मेहंदी की थीम पे हुई है.
0: अच्छा,
1: तो मैंने कहा चलो ये अच्छा है, बड़ा हमें इनकी ये वाली साइड भी देखने को मिल रही है. सोशल मीडिया का वैसे ये बड़ा फायदा हो गया.
2: अच्छा, वैसे इसीलिए शायद गाला राउंड जो उन्होंने किया है उस पे काफी शादियों पे फोकस था, मेहंदी के गाने और वो सारे उन्होंने इकट्ठे कंपाइल किए हैं, तो वो मेरा ख्याल है बिलाल मकसूद और राहत फतेह अली खान तो खास तौर पे उसको एंजॉय कर रहे होंगे कि घर में भी यही माहौल, और जॉब पे भी, जॉब पे ही है ना वो, तो उसमें भी यही माहौल इनका चल रहा है.
1: बिल्कुल नहीं, बहुत एंजॉय करते हैं इसको, और बस अब तो मुझे ये फिक्र होगी कि खत्म होगा तो फिर क्या होगा. बहुत से बल्कि इसमें कंटेस्टेंट्स हैं जिनको मैं सेपरेटली भी फॉलो कर रही हूँ, उनकी जर्नी को, उनके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, तो बड़ी उनकी मेहनत है और पीछे एक स्टोरी है, बैक स्टोरी के किस किस तरह से वो यहाँ पे पहुंचे हैं. तो चले, मे द बेस्ट पर्सन विन, मेरे तो सारे ही फेवरेट हैं, चूज करना मुश्किल है.
2: बहुत मुश्किल होगा जजेस के लिए भी किसी एक को चुनना, लेकिन आगे आगे जाके मुश्किल होता जाएगा.
1: मेरे ख्याल से समीना, आपकी ऑब्जर्वेशन, एक दफा हम बात कर रहे थे कि अभी तो ये लोग खुद तैयारी करके आते हैं, वो सॉन्ग्स गाते हैं जो इनकी स्ट्रेंथ है. मेरे ख्याल से जो फिनाले होंगे उसमें फिर जजेस की रिक्वेस्ट पे गाने दिए जाएंगे, और उसको वो कैसे निभाएंगे, शायद उसकी बेसिस पे सिलेक्शन हो,
2: ऑन द स्पॉट आप कैसे उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और किस तरह से फिर अपने वो सुरों का जो नॉलेज है उसको लेके आप उसको डिलीवर करते हैं. आई थिंक इस तरह की चीजें होंगी.
1: मेरे ख्याल से जो हर फन मौला होगा, मेरे ख्याल से हर तरीके का गाना गा सकते हैं,
2: और कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि स्टेज अपीयरेंस पे भी वो बड़ा
1: बहुत जरूरी है आर्टिस्ट के लिए.
2: क्योंकि बंदा घबरा जाता है दम से,
1: नहीं देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है. तो चले, इसी हवाले से हम आप लोग को एक गाना भी सुनाते हैं पाकिस्तान आइडल के.
2: बिल्कुल, शादी मेडले.